ले थैंक यू जीसस, तू खुदा, तू बड़े और हम घटे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड प्रभु। हम तुझ पर आशा करते हैं, यस प्रभु। हम सभी आनंदित है प्रभु, आज की रात के समय, इस घड़ी के समय परमेश्वर तेरी उपस्थिति मांगते, यस प्रभु। हमारे घरों को, हमारे देशों को, हमारे लोगों को, हमारे विचारों को हम तेरे हाथ में देते। तू बड़े हम घटे प्रभु, हमारे जीवन तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी महिमा हो, यस प्रभु। हमारे दफ्तरों में, हमारे वैन्याड़ में, हमारे परिवार में, हमारे घरों में, हमारे कलिशाओं में, हमारे देशों में प्रभु तेरी महिमा हो प्रभु, यस प्रभु। हम धन्यवाद करते, हालेलुया, इस रात के समय के लिए प्रभु धन्यवाद। सब इकट्ठा हो गए से धन्यवाद करते, हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। हम सारे ऊपर तेरे बातों के लिए धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद। तू महान है, यस प्रभु धन्यवाद। तू चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, शांति देने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम मांगते प्रभु, यस प्रभु धन्यवाद करते। तेरे सूत्र तू जीवित है प्रभु, यस प्रभु, यस प्रभु। विश्वास करते प्रभु, कलीसिया सभी कहे हमारा सीजन ऑफ द मिरेकल, ये हमारा सीजन चंगाई का सीजन है, ये हमारा सीजन चमत्कार का होने का सीजन है, ये सीजन हमारे जीवन में शांति आने का सीजन है, ये हमारा जीवन प्रभु, बड़ी बड़ी गवाही हमारे जीवन में होने का सीजन है प्रभु। आज कोई भी अंधकार की शक्ति को निकल जा रही है, बीमार चंगे होने जा रहे, प्रॉस्परिटी आ रही है यीशु के नाम से, शांति आ रही है यीशु के नाम से, ऐसे हम घोषित करते प्रभु, ऐसे हम घोषित करते प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद, आइए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। तू चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, शांति देने वाला परमेश्वर है। उदास घरों को तू आनंद से बदलने वाला परमेश्वर, राजलस को मरे हुए से तूने जिंदा किया प्रभु, वो कोड़ी को तूने शुद्ध किया प्रभु, यस प्रभु। हम मांगते इस समय प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। तू बड़े और हम घटे प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते, तेरी स्तुति करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू अद्भुत, तू पराक्रमी, यस प्रभु। तेरी महिमा युगानुग होते रहे प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, यस प्रभु। ना तो बल से, ना तो सामर्थ्य से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से, ना तो शक्ति से,

खुदा अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के।

मुझे मुक्ति हो चंगाई दे दी है। आइए बोलिए, प्रभु यीशु स्वर्ग छोड़कर हमारे सभी के दर्द को सहने के लिए आया। कोड़े खा के क्रूस उठाकर यीशु ने हमें सभी को मुक्ति दी, चंगाई दी, शांति दी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।

यस प्रभु, तूने हमें हमारे कर्ज को उठाया, हमें आंखों की पुतली जैसे तूने संभाला प्रभु, हमें गिरने से बचाया, हमें गड़बड़ी आने से बचाया। हम मांगते हैं राजा, धन्यवाद, धन्यवाद।

आवाज। कोई नहीं था मददगार प्रभु, कोई नहीं था, तूने मुझसे प्यार किया, कोई नहीं था मददगार, कोई हमें नहीं देख सकता था, लेकिन तूने मुझ पर नजर डाली, तूने मेरे अपने हाथों से मुझे सजाया, हमें अश्रु वस्त्र पहनाए, हर बंधन से मैं छुड़ाया। प्रभु हमें मदद कर, हमें तेरी जरूरत है प्रभु, तेरे बिना हमारा जीवन अधूरा है। इस हालातों में भी तू हमें खड़ा करेगा, इस परिस्थिति में भी तू खड़ा करेगा प्रभु। हमने तुझ पे आशा रखी, हमारा आशा कभी तो टूटेगा नहीं, टूटने नहीं देगा प्रभु। आज हम मांगते इस रात के समय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कोने कोने राजाओं का राजा, कोने कोने दुनिया का बादशाह, कोने कोने राजाओं का राजा, कोने कोने दुनिया का बादशाह, करो जय जयकार, करो जय जयकार। कोने कोने राजाओं का राजा, कोने दुनिया का बादशाह, करो उसका जय जयकार, करो उसका जय जयकार। कोने कोने जिसने खुदा खुश है, कोने कोने जिसे खुदा खुश है, जो सच की राह पे चलता वो सच के काम करता, जिसके दिल में सच बस जिसके लब से सच रहता, ऐसे बंदे से खुदा खुश है, ऐसे खुदा से वो खुश है, जो मित्र को

ऐसे बंदे से खुदा खुशी है, ऐसे बंदे से खुदा खुशी है जो अपने वचन से ठटता नहीं, भले हानि ही उठाता, जो ब्याज कभी ना लगाता, जो रिश्वत कभी नहीं खाता, जो रिश्वत कभी नहीं खाता, जो रिश्वत कभी नहीं खाता, ऐसे बंदे से खुदा खुशी है, ऐसे बंदे से खुदा खुशी है, ऐसे बंदे से खुदा खुश है। अलेलुया। इस प्रभु जो ब्याज नहीं लेता, जो किसी की निंदा नहीं करता, कि किसी को दुख नहीं दिलाता, ऐसे बंदे से तो खुदा खुश है, ऐसे लोगों से तो खुश है, ऐसे बच्चों से खुश है, ऐसे परिवार से तो खुश है। प्रभु धन्यवाद करते, जो आज तक हमने किसी की निंदा की है, हमने किसी को बुरा भला कहा है, हमने किसी को झूठी गवाही दी है, झूठी बातें बोली है, प्रभु तो आज हमारी मदद कर कि हम तेरे तू हमसे खुश हो जाए, तेरे आदर मान करे प्रभु, जिससे दूर न जाए लेकिन तेरे करीब आ जाए। प्रभु हमारे रिश्तों में तेरी जो दरार आई है वो दरार को हटा दे प्रभु, और हमें मजबूत कर दे, मेरे पति को मजबूत कर दे, उसकी चिंताओं को तू ले, उसकी तकलीफ को तू दूर कर दे प्रभु, ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय। यस प्रभु, तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारा ऊंचा गढ़ है, संकट के जब दिन हम तुझे पुकारते तो तू सुनता है प्रभु। यस प्रभु, हम धन्यवाद करते, धन्यवाद प्रभु, तू ही मेरा शरण स्थान है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है, तू हर हर परिस्थिति में हमें संभालता है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस।

0: यस प्रभु, तू यहाँ है, तू हमारे बीच में है, हमारे परिस्थिति में है, हमें शांति देने में तू है, हमारी कल्पना को सुंदर कराने में तू है प्रभु। हम इस रात के समय तेरा धन्यवाद करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते। आज ऐसे कितने परिवार है ऐसी बुरी हालातों में, बुरी अवस्था में, बुरी पीड़ा में पड़े हैं प्रभु, उनको सिर्फ तू ही बाहर निकाल सकता है। और कौन हमें बाहर, कौन हमें तसल्ली देगा, कौन हमें शांति देगा प्रभु। हम इस समय प्रभु मेरा कल ऑफ द सीजन में प्रवेश करे है प्रभु। तू हमें चंगा करने वाला परमेश्वर, हमारे परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर, हमें जिताने वाला परमेश्वर, तेरी विक्ट्री हमारे अंदर आई है प्रभु। तू हमारा सीजन नया करने जा रहा है, तेरे सज्जन में प्रवेश करे प्रभु। यस प्रभु, तू हमारे लिए स्वर्ग खुलने जा रहे प्रभु। धन्यवाद करते, आज जो भी अवस्था है प्रभु, इस अवस्था से तू हमें बाहर निकाल, हमारे परिस्थिति से बाहर निकाल, हमारे लोगों को आजाद कर दे प्रभु, पीड़ाओं से आजाद कर दे, बंधन से आजाद कर दे, बीमारी से आजाद कर दे प्रभु। ऐसे हम घोषणा करते, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, हम मांगते प्रभु। ऐसे कितने कपल दुविधा में, पीड़ा में, परेशानी में पड़े हैं, ऐसे लोगों को आज आजादी दे प्रभु। आजादी केवल तेरे पास है, शांति केवल तेरे पास है, चंगाई केवल तेरे पास। आज हमारा चंगाई का दिन है, आज हमें शांति पाने का दिन है, आज हमारा रिहाई का दिन है, आज हमें विजय प्राप्त करने का दिन है प्रभु। स्वर्ग खुला है और स्वर्ग हमारे अंदर है, हमारे परिवार में है, हमारे कलीसिया में है, हमारे लोगों के बीच में है, हमारे आजू बाजू के लोगों के अंदर है प्रभु। ऐसे हम घोषित करते, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु, सहायता कर, मदद कर प्रभु। तू अनुग्रह, वकाई, दया का सागर, तू शांति का राजकुमार, हमारी पीड़ा को लेने वाला परमेश्वर, आज इस रात के समय हम धन्यवाद करते। हमारे बच्चों के जीवन में तू कार्य कर, उनकी पीड़ाओं से उन्हें आजाद कर दे, उन्हें उनकी तकलीफ से आजाद कर दे। ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु, तू सहायता कर प्रभु, मदद कर, तेरे अनुग्रह में, तेरे शांति में, तेरी दया में हमें बनाए रखना प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, कितने जवान बच्चे अचपड़ा में है, नौकरी नहीं है, शादी के लिए रुके हुए हैं प्रभु। ऐसे सभी बच्चों को हम तेरे हाथ में देते हैं, तू रखवाली करने वाला है, प्रोटेक्शन तेरे पास है, विजेता तेरे पास है, शांति तेरे पास है। आज हमारी इस अवस्था से मैं बाहर निकाल, हमारे बच्चों के जीवन में कार्य कर, बहनों के जीवन में कार्य कर, हमारे कलीसिया में कार्य कर। आज हम एक मन होकर तेरे पास आते प्रभु, हमारे जीवन में कार्य कर, मेरे पति की अवस्था को तो बदल दे, जो वो निराश हो चुका है, आज उसका सब कुछ नष्ट हुआ, लेकिन फिर भी हम आशा रखते प्रभु, खराब को तो अच्छा करने वाला परमेश्वर, टूटे हुए को फिर से जोड़ने वाला परमेश्वर, निराशा में आजादी देने वाला, हम तेरे पास आज विनती करते, प्रार्थना करते, विश्वास से प्रार्थना करते। जब याब को विश्वास के साथ अपने नाना, अपने अंकल के पास जाने से पहले प्रभु उसने रेस लिया और सो गया, परमेश्वर तूने उनको दर्शन दिखाया, स्वर्ग दिखाया, उसके आगे आने वाले जीवन के लिए रास्ता दिखाया। आज हम भी यही मांगते हैं प्रभु, हमें रास्ता दिखा, हमारे परिस्थिति में रास्ता दिखा, हमारे आने वाले कल के लिए रास्ता दिखा, हमारे आने वाले आज के लिए रास्ता दिखा प्रभु। हमारी परिस्थिति को बदल, मेरे पति की अवस्था को बदल, मेरी अवस्था को बदल, मेरे जीवन का तावा तेरे हाथ में देते, मेरे जीवन की हर एक रुकावट निकाल दे, हर बंधन ने, हर बंधन हमारे जीवन से जो मंडरा रहा है, बाप दादा अनुसार साप, शाप, मेरे परिवार के विरुद्ध आया हुआ श्राप, औली के विरुद्ध आया हुआ श्राप, ऐसे सारे पड़ाव को, बंधन को हम तोड़ते यीशु के नाम से, और शांति को रिसीव करते, चंगाई को रिसीव करते, बांझपन की आत्मा को निकाल कर तू एक बढ़ोतरी का जीवन देने जा रहे, गरबा का फल हम प्राप्त करने जा रहे। आने वाले दिनों में हम देखेंगे प्रभु, तू महान परमेश्वर, तू अद्भुत पराक्रमी, हर एक के जीवन में तू देने जा रहे धन्यवाद। ऐसे में तैयार कर, ऐसी अवस्था हमारे अंदर आने दे प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह की मीठे नाम से मांगते, आमीन आमीन। आइए हम देखेंगे जॉन का 11वां अध्याय से कुछ वचन को। जॉन चैप्टर 11 हाली वेल, थैंक यू जीसस। आज हमने पढ़ा जॉन चैप्टर 11 अध्याय से कुछ वचन को हम देखेंगे। आज हम बातचीत करने जा रहे एक ऐसे व्यक्ति की जिससे यीशु बहुत पसंद करता था। यीशु ने उसके साथ बहुत मित्रता रखी, उसको मित्र कहा, दोस्त कहा। उस लाजरस की बात हम करने जा रहे हैं। लाजरस के एक यीशु का मित्र था, उसने अपनी उससे बहुत मित्रता की, कि लाजरस बहुत विश्वास योग्य था प्रभु के साथ। हम उसका 36 वचन पढ़ते तो इसमें कहा गया है, क्योंकि जब लाजरस मरा तो सब लोग बोलने लगे कि यीशु लाजरस से बहुत प्रेम रखता था, परंतु उसमें से किसी ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली ये भी न कर सका कि मनुष्य न मरता? देखो, लोगों ने यीशु से भी कुछ बातें कही। यहाँ लाजरस मरा हुआ था, मर गया था, और ये भी कहा गया है कि यीशु का मित्र था, यीशु लाजरस से बहुत प्रेम करता था, और ये भी कहा गया कि यीशु तो अंधों को आंखें देता है, भैरों को सुनने दिलाता है, लंगड़ों को चलने सिखा दिलाता है। तो क्या लाजरस को उसने मरे हुए से क्यों नहीं जिलाया? उस समय की बात है जब लाजरस मर गया, तभी यीशु उसी गांव में आया करते थे, और उसको समाचार भी मिला था कि लाजरस मरने पर था। तब भी प्रभु यीशु उधर नहीं गए, अपने चेलों को ये कहा गया कर भेजा था मैसेज कि अभी उसका वक्त आया नहीं था। कभी कभी हमारे जीवन में आशीष करने का वक्त नहीं आया होता है, और प्रभु ऐसी अवस्था में हमें रखता है, और जब भी हमारी अवस्था वैसी हालातों में आती है तब परमेश्वर उधर कार्य भी करता है। आज हम देखेंगे यीशु ने मन में बहुत उदास होकर कब्र पर आया। लाजरस मरने के बाद 4 दिन के बाद यीशु कब्र पे आया। वो गुफा थी और एक पत्थर उसको पर रखा गया था, बंद किया गया था। अभी लाजरस कभी बाहर नहीं आ सकता है, ना ही उसको कोई निकाल सकता है। उसके ऊपर पत्थर रखकर कब्र बंद की गई थी। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। कब्र में आकर पहला यीशु ने क्या बोला कि पत्थर को हटाओ। उसे मरे हो को मरे हुए बहन मार्था उससे कहने लगी, मरे हुए को 4 दिन हुए, उसमें से अभी दुर्गंध आती होगी, बास आता होगा, ये सब फलाना फलाना उसने यीशु को बताया। लेकिन इधर क्या बोलता है, ये प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हुए थे। कितने 4 दिन हुए थे मरे हुए को? यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी? आज प्रभु तुम्हें और हमें भी प्रभु आज ही। लाजरस मरा हुआ था, 4 दिन में कमर बंद था, उसमें से दुर्गंध आती थी। कहीं ने उसको बोला, ई मित्र होकर भी उसको ठीक नहीं कर सका। हो तो अंधों को आंखें दिलाता है, बहरों को सुनने दिलाता है, लंगड़ों को चलना दिलाता है, तो लाजरस को और नहीं बाहर निकाल सका। लेकिन यही देखो इधर क्या वो यीशु बात करता है मार्था से। यीशु ने उसे कहा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। आज प्रभु तुम्हें और हमें भी यही कह रहा है कि जर आज प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा होते हुए देखेंगे। चाहे हमारी परिस्थिति मरी हुई दशा क्यों न हो, परेशानी की दशा क्यों न हो, बीमारी की दशा क्यों न हो, और अन्य दशा क्यों ना हो, जरा जब विश्वास करते हैं। मार्था को परमेश्वर ने कहा कि तुझे मैंने कहा था, तू मुझ पर विश्वास करेगी तो मेरी महिमा देखेगी। आज प्रभु तुम्हें और हमें यही कह रहा है। और दूसरी बात देखो, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया, तब परमेश्वर ने हमारे बोझ को हटाया। वहां तो लाजरस के जीवन का पत्थर हटाया गया, लेकिन यहाँ आज परमेश्वर तुम्हें और हमें कह रहा है, हमारे बोझ को वो हटाया। कब? विश्वास करने से। प्रभु पहला बोलते, विश्वास करेगी तो महिमा देखेगी, ये बात मैंने पहले तुम लोगों को पहले से कही गई थी। और फिर पत्थर हटाया गया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सुन ली है। आज हमें तुम्हें यही कहना है, प्रभु मैं मेरी अवस्था को ऊपर विश्वास करती हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। जो बीमार है वो आज बोले कि मैं विश्वास करती हूँ कि मैं बीमारी से चंगी हो जाऊंगी। जो बांझ वाली बहने हैं उनको आज प्रभु कह रहा है, विश्वास करो कि प्रभु ने उस बांझ बहनों की प्रार्थना भी सुन ली गई है। जिनके घरों में शांति नहीं उनको आज प्रभु कह रहा है कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है, प्रभु की शांति तुम्हारी ताकत होने जा रही है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनका कारण मैंने यह कहा, जिसके विश्वास करो तो तुमने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। क्या पुकारा? हे लाजरस निकला, जो मर गया था, कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। आज प्रभु तुम्हें हर हमें लाजरस की तरह आवाज दे रहा है, ए स्मिता बाहर आ जा। और अन्य बहनों को बोल रहे, आ जा बाहर। लाजरस को मरे हुए में से बाहर बुलाया। वो अपने वस्त्र छोड़कर, अपनी परिस्थिति को छोड़कर वो खुद बाहर आया। आज हमें भी हमारी परिस्थिति को छोड़कर हमें वहां से बाहर आना है। जिसका मुंह अंगों से लिपटा हुआ था, यीशु ने उसे कहा, उसे खोल दो और उसे जाने दो। आज हमारे बंधन से प्रभु हमें आजाद करना चाहता है, हमारे पीड़ाओं से हमें आजाद करना चाहता है, हमारे तकलीफों से हमें आजाद करना चाहता है क्या ऐसा? जिस तरह लाजरस ने विश्वास किया, उसके विश्वास ने उसको बाहर लेकर आया। जैसे आवाज दिया यीशु ने, उधर तुरंत तो बाहर आया। आज तुम्हें और हमारे हमारे परिस्थिति से हमें बाहर आना है। परिस्थिति को हमें लिपटे नहीं रहना है, परिस्थिति को छोड़कर बाहर आना है। प्रभु तुम्हारे हमारे जीवन में बड़े काम करना चाहता है, हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाही करना चाहता है। आज हमारा मिरेकल का सीजन है, हमारे बंधन से आजाद करने का सीजन है, शांति लेने का सीजन है। प्रभु आज हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है। हम नहीं जानते हम कैसी अवस्था से बाहर आएंगे, लेकिन हमें प्रभु पर विश्वास करना है। जैसे मार्था ने, जैसे मरियम हमेशा प्रभु के चरणों पर बैठा करती थी, और लेकिन मार्था होती थी वो हमेशा खाना बनाया करती थी, लेकिन मरियम यीशु के चरणों पर बैठ के उसकी सारी बातें सुनाया करती थी और वो अपने मनों को उतार देती थी। आज तुम्हें हमें प्रभु की सारी बातें हमारे मन के अंदर उतारनी है। अभी आगे क्या होने वाला है ये हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु का फेवर जब हमारे ऊपर आएगा, उसका फायर जब हमारे ऊपर आता है, तब सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा आज का वचन कहता है। और एक वचन हम पढ़ेंगे उसमें धन्यवाद। वो कोड़ी, वो भी ऐसा था, उसको को वो तो शुद्ध कभी नहीं होया करता था, लेकिन वो कोड़ी भी प्रभु के पास आता है और बोलता है मुझे ठीक कर दे। प्रभु तू चाहे तो तू मुझे ठीक कर सकता है। उसने अपने विश्वास को पूरी तरह से अपने अंदर भरा के रखा और यीशु के पास आया चंगा होने के लिए। वो 12 साल की स्त्री पूरे विश्वास को भर कर प्रभु को छूने आई। उसको पता था मैं प्रभु को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और आज तुम्हें और हमें प्रभु यही कहते हैं, पूरा विश्वास अपने अंदर जागृत करो। परिस्थिति आएगी, गड़बड़ी आएगी, लेकिन अपने विश्वास को कमजोर होने मत देना, ऐसा आज का वचन कहता है। प्रभु जैसे 12 साल की स्त्री को चंगा कर सकता है, लाजरस को मरे उसे जिंदा कर सकता है, तो तुम्हें और हमें भी प्रभु ठीक कर सकता है, ऐसा आज का वचन है। आइए हम आंखें बंद करते। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन, जिस तरह तूने लाजरस को बाहर निकाला। आज हमारे ऐसी कितनी बेटियां पीड़ा में है, दुखों में है, निराश में है, सारे परिस्थिति बिगड़ी हुई है, लेकिन तू रिस्टोर करने जा रहा है प्रभु, हमारे जीवन को नयापन देने जा रहा है, बिगड़ी चीजों को सही करने जा रहा है प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु, सहायता कर, मदद कर, तेरे वचनों में बढ़ोतरी होने दे, प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए मदद कर, और तेरे तुम्हें तैयार कर, तेरे रास्ते तेरी परिस्थिति में हमें मजबूत कर, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु। यीशु मसीह नासिक के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड मनवीर भाई।
1: हेलो, प्रेज द लॉर्ड।
0: प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड मंजुमा।
1: ओके मां, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।
0: Yeah, God bless you. Pray for my husband because today Italy's lot of ice fall down and our wine are all spoiled. Hello? Hello, sister?